आपने कभी अपने पार्टनर के साथ गार्डनिंग ट्राई करी है? सो अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये ना गार्डनिंग कितना मैसी होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं एंड देन यू गेट ऑल स्वेटी और हर जगह मिट्टी मिट्टी लगी होती है, टिल आई एक्चुअली ट्राइड गार्डनिंग विद माई देन पार्टनर एंड हम दोनों के हाँ कपड़ों में मिट्टी लगी थी, मेरे तो नेल्स में भी मिट्टी घुस गई थी, बट हमने इतना हंसी मजाक किया एंड देन यू नो वी टुक टर्न्स टू टेक केयर ऑफ द प्लांट. एक हफ्ता वो मेरे साथ होता था प्लांट, एक हफ्ता उसके साथ होता था एंड दैट एक्चुअली टर्न्ड मी इनटू अ फुल टाइम गार्डनर जो मैं आज की डेट में हूँ. ना कि सिर्फ आपको ये कनेक्ट करता है विद द अर्थ, विद द फीलिंग ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ लव फॉर प्लांट्स एंड नेचर, लेकिन ऐसा करने से अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु हैज़ अ कपल ऑफ एंग्जाइटी अटैक्स या अ कपल ऑफ पैनिक अटैक्स एवरी नाउ एंड देन, आपकी ये जो एंग्जाइटी अटैक्स हैं बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज प्लेइंग विद द अर्थ इज एक्चुअली एन एक्ट ऑफ ग्राउंडिंग योर एनर्जीज इज वेल. इसे ट्राई करके देखो एंड व्हाट बेटर डे टू स्टार्ट देन टुमारो, यू नो, बिकॉज वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग आवर लव फॉर मदर अर्थ एंड व्हेन यू डू दैट एंड रियलाइज इसमें कितने मजे आते हैं, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफ बी पर टू टेल मी अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, टेल मी योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची,

0: Mirchi, it's hot.
1: Do tole ki mundri la de, kin tole

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, किसी काउंटडाउन की रैंकिंग के बारे में कोई सवाल, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों के काउंटडाउन में एक नई एंट्री है। शो पर हम अपना 90s एंड 2000 का इंडी पॉप क्लासिक बजाने वाले हैं, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौड़ की आवाज की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना, 16 हफ्ते हो गए हैं इसको काउंटडाउन पर। बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म। गाने का नाम है दरमिया। मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7 हो चुप कर लंग जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे यू विल बी लाइक ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI, तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोज क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नडा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुना है। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: बंजारा दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार आ रहा है। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, अ हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika। Now September जा रहा है, October आ रहा है, and I'm sure आपने तो notice कर ही लिया that मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला signal ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है, मे बी आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, सेम ट्रैफिक, सेम काम, सेम फोन कॉल्स, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वी आर रियली excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I'm really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि.
2: शाम तन्हा सी लगे।
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है, ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर, प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में, दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

I actually have no words for how this song makes me feel. What a beautiful composition. That was Sham Tanha by Agni. At RJ Kanak on Instagram पर please आओ मुझे बताओ ऐसा कौन सा गाना है जिसमें शाम आपका मेन कैरेक्टर है. मैं ऑनेस्टली ये गाना अपने हर दोस्त को रेकमेंड करती हूँ. शाम तन्हा बाय अग्नि इज माय रेकमेंडेशन फॉर यू. यू सेंड मी योर्स. गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलेगा. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ डबल वैमी बाय बंजारे बिकॉज़ उनका नया गाना बरसात 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Rana, Indie Top 10, Kanika ke saath. On Mirchi
1: par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jam hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram pe jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani hai, bindaas aake hit me up. I truly, really believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Tabhi toh it's time for what we call
0: Kanika's Kasat Classic.
1: हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
1: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार, बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. इसकी मेलोडी में, राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन, वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं. उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना. आरुष, दिस वन इज फॉर यू. अकॉर्डिंग टू आरुष, शी इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है. वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है. सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी. किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे. आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष. दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट. कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

पहला प्यार, पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन आ कसर क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं, हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्काय माय प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बाजरा हितेन शर्वी यादव का गाना, गाने का नाम है बैंगर। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक आल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए जब

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Hit gana sunna aasan hai. ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ, और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकल कर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूँ सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी। And we kickstart the countdown with gana number 20, Uncha Lamba Ka, the rehashed version from Welcome to the Jungle.
0: Number 20.

फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जिसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने। अरे तुम दुम दुम दुम दुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़ी लड़ैया रे, ओमकारा, या फिर बाजीराव सिंघम। दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। And before I get to Drishyam, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी happens to be गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, well, Drishyam की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिर खान के शब्द, from Drishyam, the conclusion। नंबर 19।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12

0: तमन्ना भाटिया,
1: वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है।
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए।
1: एंड देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके अलावा भी देयर क्वाइट अ फ्यू डांस नंबर्स। एक और याद आ रहा है यार, रेड 2 में गाना आया था नशा करके, एंड तमन्ना इन गानों में कमाल करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट अगर आप बॉलीवुड के बेस्ट डांस नंबर्स की बात करोगे तो तमन्ना का नाम डेफिनेटली टॉप 3 स्पॉट्स में होगा। प्रॉब्लम गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इमेज से है, क्योंकि तमन्ना साइंड अप फॉर दिस अपकमिंग फिल्म कॉल्ड वन अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहाँ पे तमन्ना का एक प्रॉपर एक्टिंग रोल है। लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड ठुमक ठुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन परसोना। देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था। एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है। आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है। पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है। श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है। पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है। ये है जय जय राम रामायण,
3: नंबर 11।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल ये है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phasta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations को साथ रखना और अपनी values को compromise किए बिना उन्हें आज के cinema में लेकर आना, शायद सूरज जी की सबसे progressive बात यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपनी values बदलने से इनकार कर दिया। और अब इसी दुनिया में melody लेकर आ रहे हैं Bollywood के ultimate hit machine, the man who collaborated with सूरज बरजातिया on प्रेम रतन धन पायो, हिमेश रेशमिया। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब। अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब। अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब। अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब। ऐसी मेरी वाइब।

0: We be fronting on the lines. Relax, honey. Get it?
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना आई एम श्योर कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना? लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

पता है कुछ कुछ मॉर्निंग्स में कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और कुछ मॉर्निंग्स में यू नीड अ थेरेपिस्ट एंड देन कुछ मॉर्निंग्स ऐसी होती है जहां पर टेक्निकली तुम्हें एक शो की जरूरत होती है. गुड मॉर्निंग गाइस, ये वही शो है जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स ऑफिशियली ऑन. मेरा नाम है प्रिसिला एंड लिसन, वेदर यू जस्ट वोक अप या फिर फैबुलस एंड फुली फंक्शनिंग हो ऑलरेडी या फिर यू आर करंटली स्टेयरिंग एट योर कॉफी लाइक प्लीज डू द जॉब टुडे फॉर मी, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू मोर hours because this is your little slice of home right here in the middle of your American morning. Thoda thoda sa Bollywood ki baatein karne wale hai, thodi yahan wahan ki baatein karne wale hai, thoda sare yaar same to same bro ye sab karne wale hai and obviously enough mirchi dar music to make that commute feel less commute and more like a mini dance floor. So buckle up quite literally my desi fam and aaj ka morning jo hai wo shuru ho chuka hai. I've got music, masti, mirchi and me bole to Priscilla tumhare saath mein ho. ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी अपडेट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ सुनने वाली हूँ. एंड हे डोंट जस्ट लिसन टू मी, टॉक बैक, व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244 एंड टेल मी व्हाट्स हैपनिंग इन योर मॉर्निंग एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. और अब चला देगा मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। एंड इट्स टाइम फॉर दिस डे दैट ईयर। आज है सितंबर 30। बैक इन 1791 मोजार्ट फाइनल ओपेरा द मैजिक फ्लूट प्रीमियर्ड इन वियना। फास्ट फॉरवर्ड टू 1935, बोल्डर डैम, लेटर रीनेम्ड एज द हूवर डैम, वाज ऑफिशियली डेडिकेटेड ऑन द नेवाडा अरिजोना बॉर्डर। बेसिकली अमेरिका ने कहा पानी, लेट्स बिल्ड अ मैसिव वॉल फॉर इट। 1946 द नूर्नबर्ग ट्रायल्स डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट, सेंटेंसिंग लीडिंग नाज़ी फिगर्स फॉर वॉर क्राइम्स। 1949 में द बर्लिन एयरलिफ्ट ऑफिशियली एंडेड आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ सप्लाइंग वेस्ट बर्लिन ड्यूरिंग द ब्लॉकेड। एंड 1954 में द यूएसएस नॉचुलस वाज कमीशन्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। एंड फाइनली 1966 में बोट्सवाना बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। एंड व्हाइल वी आर मेकिंग हिस्ट्री टुडे, कम मेक सम रेडियो हिस्ट्री विद मी टू। फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244। Stay tuned.

इधर मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है। वेदर वाइज राइट नाउ इट्स अराउंड 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड बिकॉज ऑफ द वेस्ट साउथ वेस्ट ब्रीज इट्स फीलिंग क्लोजर टू 56 डिग्रीज फारेनहाइट। सो हाँ, मॉर्निंग कम्यूट के लिए हल्का सा जैकेट वाला मोमेंट हो सकता है। एंड एज वी मूव इन टू द डे एक्सपेक्ट पार्टली क्लाउडी स्काईज अराउंड 9 AM एंड बाय लेट मॉर्निंग क्लाउड्स विल बी टेकिंग ओवर एंड मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। बट गुड न्यूज ये है कि रेन का ड्रामा ऑलमोस्ट जीरो है। देयर इज ओनली अबाउट 10% चांस ऑफ रेन एंड प्रेसिपिटेशन ओवर द लास्ट 24 आवर्स 0 millimeters और नेक्स्ट 24 आवर्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी जीरो। मतलब कि आज अम्ब्रेला को छुट्टी मिल सकती है। टेम्परेचर्स क्लाइम टू अराउंड 75 degrees फारेनहाइट विद अ लो टुनाइट नियर 57 degrees फारेनहाइट और ह्यूमिडिटी जो है इट विल बी अराउंड 74% ड्यूरिंग द डे एंड कुड राइज अप टू 90% ओवर नाइट। सो हेयर फ्रिज जो है उसका ऑफिशियल वार्निंग मैंने दे दिया है तुम्हें। विंड स्टे फेयरली लाइट एट अराउंड 5 miles per hour टुडे एंड टुनाइट वी आर लुकिंग एट मोस्टली क्लाउडी टू ओवरकास्ट स्काइज। सो आज के दिन वेदर का मूड जो है ना वो है कंफर्टेबल क्लाउडी एंड कंपैरेटिवली काम। परफेक्ट वेदर फॉर दैट हॉट चाय एंड अ लिटिल बिट बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स। बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगाकर जाना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड मिर्ची की वाइब्स बरकरार रखो। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर। दैट्स 9033 647 244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हे देयर, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो मिर्ची आवर का 3। सबसे पहले अ फ्लाई दुबई फ्लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू टेल अवीव मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन सऊदी अरेबिया आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ अ वायलेंट ऑल्टरकेशन बिटवीन द पायलट्स। द प्लेन रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड अराउंड 17,400 फीट इन जस्ट 2 मिनट्स बिफोर द सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट हैपेंड। रिपोर्ट्स से एवरीवन ऑन बोर्ड इज सेफ। नंबर टू पर इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम हॉलीवुड। एक्टर चैड लो एंड किम पेंटर हैव अनाउंस्ड द डेथ ऑफ देयर 13-year-old daughter Fiona. The family has asked for privacy and also urged anyone struggling with mental health to reach out for support. If you or someone you know is in crisis in the US, you can call or text 988 for the suicide and crisis lifeline. And lastly, a new street cleaning machine was introduced to collect roadside litter in Gurgaon in India, but a viral video showed a worker manually operating its suction pipe to pick up individual pieces of garbage. And naturally, the internet questioned, where is the automation actually? The civic body says the machines are part of its mechanized street cleaning efforts. And that's your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 90 3364-7244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinata,

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और देसी स्पोर्ट्स फैंस, फोन को साइड में रखो क्योंकि हम बात करने वाले हैं मेडल्स की।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: एशियन गेम्स में इंडिया इज मेकिंग सम सीरियस नॉइज इन आईची नागोया। डे 10 के बाद इंडिया के अकाउंट में 52 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं एंड 25 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एंड दैट टेक्स अस टू द 10th प्लेस ऑन द मेडल टेबल। अभी फिलहाल गेम्स ऑनगोइंग है और इंडिया ऑलरेडी हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, मतलब कि मेडल कवर्ड, अभी और स्पेस बनाना बाकी है। और कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स भी बने हैं। नीरू डांडा, जैसे कि मैंने कल बताया था, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन इंडिविजुअल वुमेन्स ट्रैप विद एन एशियन रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 28। मिक्स्ड 4x100 रिले टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है 41.06 सेकंड्स में, अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट में बारिश ने क्वार्टर फाइनल्स को लिटरली वॉश आउट कर दिया, पर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेमीज में पहुंच चुके हैं। इंडिया फेसेस श्रीलंका टुमारो। एंड रेसलिंग में सुनील कुमार ने 87 किलोज में ब्रॉन्ज जीत कर कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स मेडल नंबर 2 कर दिया है। एंड यस, मेडल्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं एंड हम डायस्पोरा वाले जो है ना, सुबह सुबह स्टेटिस्टिक्स के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं। और अगर तुम मुझसे इमोशनली अटैच नहीं हुए हो अभी तक, तो क्या कर रहे हो यार। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिस्सिला, तुम्हारे साथ में। एंड बर्थडे पार्टी स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, क्योंकि आज सितंबर 30th को जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उनको बताना है मुझे कि आज तुम्हारे साथ कौन कौन अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले वी गॉट द गोल्डन वॉइस फ्रॉम इंडिया, शान एंड बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार प्रोशनजीत चैटर्जी, एंड ज्वाइनिंग देम एक्ट्रेस दीप्ति भटनागर, एक्ट्रेस श्वेता भारद्वाज एंड पैरालंपिक चैंपियन दीपा मलिक। मतलब कि बर्थडे केक का साइज जो है वो छोटा हुआ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज आज की गेस्ट लिस्ट काफी ह्यूज है। एंड इंटरनेशनली वी गॉट मोनिका ब्लूची, एक्ट्रेस मैरियो कोतियार एंड फ्रान ड्रेशर फ्रॉम द नानी, किरण कल्किन फ्रॉम सक्सेशन, सिंगर टी पेन एंड डांसर एक्ट्रेस मैडी जीगलर एंड एज्रा मिलर, ये सारे के सारे हैं सितंबर 30th के बेबीज। सो बर्थडे बेबीज, आज यू आर नॉट अलाउड टू से मेरा बर्थडे तो बस नॉर्मल सा डे है, बिकॉज यू गॉट सम प्रीटी अमेजिंग नेम्स विद यू। सो विश यू हैप्पीएस्ट बर्थडे, खाओ पियो ऐश करो, केक बांटो, केक खिलाओ, और मुझे अपने बर्थडे पिक्चर्स भेज सकते हो तुम। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। ऑल्सो सेंड मी योर शाउट आउट्स हियर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: खैर, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,215. $4,215 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और आने वाली पुष्य नक्षत्र धनतेरस दिवाली के समय गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएं, उससे पहले आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ राज ज्वेल्स की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आज ज्वेलरी अप्रूव होने पे गोल्ड का प्राइस लॉक करके घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी हिडन फी के। ज्वेलरी आपके साथ, गोल्ड का प्राइस लॉक्ड, 9 इंस्टॉलमेंट्स में सेम प्राइस पे ज्वेलरी आपके साथ घर जाएगी और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलेंगे बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। मेरे साथ रहो इंस्टा और एक्स पर भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला। सबसे पहले, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डायरेक्टिंग द यूएस गवर्नमेंट टू यूज सुपर इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज SI इंस्टेड ऑफ AI। दिस विल बी डन इन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस वेयर लीगली परमिटेड। और इलॉन मस्क ने इवेंट में गलती से फिर AI बोल दिया बिफोर करेक्टिंग हिमसेल्फ टू SI। ट्रंप लाफ्ड एट द स्लिप अप। नंबर टू पर रिपोर्ट्स से रशिया इज यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड टेलीग्राम टू रिक्रूट सम अमेरिकन्स फॉर मिलिट्री सर्विसेज linked to the war in Ukraine. Ukrainian officials have said at least 18 Americans have joined, with reports of signing bonuses around $26,000. These are reported claims, and recruitment and participation details remain a matter of ongoing reporting. And lastly, a viral video from Muzaffarpur, India shows moviegoers removing their footwear before entering a theater to watch The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia. The film's Chhath Puja sequence have been getting a attention, and viewers apparently took the festive spirit right to the theater entrance. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है पता करने की कि आज का दिन कैसा जाने वाला है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, प्रॉमिस का लोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको डिलीवर भी करना होता है यार। वर्क में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लेकिन इट्स गोना बी वर्थ इट। लकी कलर इज फायर इंजन रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज प्रैक्टिकल चॉइसेस का दिन है। कंफर्ट जोन में घुसने से पहले अनफिनिश्ड बिजनेस को निपटाओ। पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब पेंडिंग काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, एनर्जी बहुत है, बस एक्शन भी होनी चाहिए। गोल्स पे फोकस करो, जल्दी जल्दी में डिसीजंस मत लो। प्रोफेशनल काम में कंसंट्रेशन इज योर सुपर पावर टुडे। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, एंथुजियाज्म हायर है। शॉर्ट ट्रिप या टीम के साथ कोलैबोरेशन से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बेसिकली सोलो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, टीम को भी स्क्रीन प्ले में पूरी तरह शामिल करो। लकी कलर इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, करेज और डायनामिज्म फुल पावर पे है, लेकिन चेंजेस के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहना। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस वो आज बिना इनविटेशन के आ सकते हैं, सो बी अवेयर। लकी कलर इज सनफ्लावर येलो, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, इनर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस भी राइजिंग है और सोशल स्टैंडिंग को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को नॉट टुडे सैटर्न बोलकर हटा देना साइड में। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 5। दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1। अब बची बाकी की 6 राशियां, वो लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टे और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: की गल करनी है
1: तेरे मेरे बारे
0: की।
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: there. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings and it's time for Rashi Zone Part 2.
1: Mirchi Rashi Zone.
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करना है। फाइनेंशियल डिसीजंस में इम्पल्सिव मत होना और अपने आइडियाज प्रेजेंट करते वक्त कॉन्फिडेंस जो है फुल वॉल्यूम पर रखो। लकी कलर फॉर यू इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटर अर्निंग्स इम्प्रूव हो सकती है और करियर में प्रोग्रेस के साइंस है। प्रोजेक्ट्स को कामली रिव्यू करो, पेशेंस रखो, पैनिक नहीं। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ऑर्गेनाइजेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड टुडे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज हार्ड वर्क से रिवॉर्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बेसिकली लिंक्डइन वाला वर्जन ऑफ यू नीड्स टू वेक अप एंड गेट टू वर्क। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 4। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फाइनेंशियल गेन्स और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड से गुड वाइब्स आ रही है। जो टास्क पोस्टपोन किए थे उनको कॉन्फिडेंस के साथ रिस्टार्ट करो। कल करेंगे डिपार्टमेंट, आज बंद है। लकी कलर इज कॉपर, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, पेशेंस, प्लानिंग और हेल्थ, तीन वर्ड्स याद रखो। आज न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखो। हर शाइनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता है। लकी कलर इज aqua blue, lucky number is 13. Pisces yani main rashi, career direction mein shift aa sakta hai aur courage lock hoga. Important pending drafts bhejne hain, decisions lene hain, aaj send ka button dabao aur usse dosti kar lo. Lucky color is plum purple, lucky number is 10. And there you have it, Rashi Zone hua khatm, lekin Mirchi Mornings abhi jari hai aur ab Mirchi Dar gaano ki bari hai. वाह वाह, क्या राइम किया मैंने। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड बस अब एक लास्ट अपडेट बची है बिफोर आई लेट यू गो, और विराट कोहली के फैंस अपने कान खोलकर वॉल्यूम बढ़ाकर सुनना, क्योंकि किंग ने रैंकिंग्स में फिर से एंट्री मार दी है। एंड विद दैट मिर्ची मॉर्निंग्स अब ऑफिशियली रैप अप हो रहा है। लेकिन जाने से पहले पूरी खबर तो बताकर जाऊं, विराट कोहली इज नाउ द वर्ल्ड्स नंबर 2 ओडीआई बैटर आफ्टर स्मैशिंग हिज 55th ओडीआई 100 अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। विराट हैज जंप्ड वन स्पॉट इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। ही इज सिटिंग ऑन 796 रेटिंग पॉइंट्स, जस्ट 20 पॉइंट्स बिहाइंड नंबर 1 दैट इज शुभमन गिल। मतलब कि कॉम्पिटिशन जो है घर का ही है, एक तरफ है दूसरी तरफ हमारा गिल है। एंड ऑनेस्टली 55 ओडीआई 100, भाई तुम लोग बर्थडे पे 55 कैंडल देखकर टायर्ड हो जाते हो, लेकिन विराट जो है वो 55वां 100 मारकर रैंकिंग्स में जंप कर रहे हैं। सो दैट्स योर लिटिल स्पोर्ट्स अपडेट बिफोर वी साइन ऑफ। ऑल द विराट फैंस कांग्रेचुलेशंस, एंड ऑल दोस हु डोंट लाइक विराट, व्हाई डोंट यू लाइक विराट? थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी, बोले तो प्रिसला, दिस मॉर्निंग, फॉर लव्स, फॉर म्यूजिक, फॉर मिर्ची एंड फॉर मस्ती। सुनते रहो, सेम टाइम ट्यून इन करो। रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रोज मिलती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से 11

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। Well, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा

को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के ना बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात के, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी चीज़।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, ही नेवर एक्सपेक्टेड कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? शी सेड कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

माधुरी दीक्षित सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हमें से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंपसूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल, फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहाँ फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी, एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वाज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी। एंड वॉट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो, नाना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपियरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You'll be shocked to know, you'll be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे ही आप हो श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी। हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग बाय सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी, एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वो शाम कुछ

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं मैं और आप, गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबान पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआर श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो।

0: रेडियो ओवर गो रेडियो मिर्ची रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.